0: उबहड़ गैया अच्छा होइया भलाई सो
1: होगो अच्छा नय हस राय गुनी जने ई कोइते पारे तुम्हार कौन मन है
0: अच्छा तेरा बुद्धि का ढकना खुल गया
1: है गो तो प्यार बोलछी की परख करे देखो ना